मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया

0: दर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका की वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य विनोबा भावे का कथन है, ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 326। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। इसके अंतर्गत गायक हफीज अहमद खान से बातचीत सुनिएगा प्रस्तुति छाया गांगुली की।

सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनाएंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनिएगा आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महमूद पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा सुनिएगा। इसके अंतर्गत पीसीओडी और आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेंगे दिन में 12:05 से सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। सखी सहेली, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉयड के सितारे, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की।

शाम 6:30 मिनट से झरोखा, शाम 6:35 मिनट से सुनेगा संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनेगा प्रश्न तो यही है, लेखन वृंदा मंजीत का, निर्देशन अजीमुद्दीन का। चित्रलोक रात 8:15 मिनट से आपके लिए सुनवाएंगे रात 9 बजे से।

छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 बजे से। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात रात 10:30 से सुनेगा और रंग तरंग रात 11 बजे से। आपको याद दिला दे आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर, जिसे आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 से और रात्रि 9:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 326।

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्री राम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरापान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं। मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत।
2: खान साहब नमस्कार।
3: नमस्कार पवार साहब।
2: खान साहब आज आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है और
3: मुझे भी ऐसे ही मसरत हो रही है।
2: एक संगीत चर्चा हम लोग करेंगे।
3: जरूर
2: खान साहब, जैसा कि ज्ञात है जिला बदायूं यूपी के सहसवान कस्बे के नाम से इस घराने का नाम सहसवान घराना पड़ा।
3: जी हाँ।
2: तो इस घराने को सहसवान रामपुर घराना भी कहते हैं।
3: जी हाँ।
2: इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।
3: जी हाँ, ऐसा है कि इस कस्बे में यानी कि सहसवान में
2: जी
3: बहुत अच्छे अच्छे गायक हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम सहसवान घराना है। लेकिन चूंकि ये सारे कलाकार रामपुर दरबार में थे तो इस वास्ते इसका नाम सहसवान रामपुर घराना पड़ गया। क्योंकि जहाँ तक आपको तो मालूम है कि राजा और नवाब ये जितने भी गुजरे हैं ज़्यादातर उन्होंने कलाकारों की बड़ी सरपरस्ती की है
2: जी।
3: और उनके आश्रय में रहकर हमारे कलाकारों ने यानी बहुत ही तरक्की जो है वो पाई है। तो इस लिहाज से ये सहसवान रामपुर घराना जो है ये कहलाता है
2: जी। खान साहब, जैसा कि अनुमान या ख्याल है कि प्रारंभिक दिनों में इस घराने में ध्रुपद धमार गाया जाता था
3: जी,
2: और शायद 17वीं 18वीं शताब्दी में ख्याल गायन की शुरुआत हुई।
3: जी हाँ, 17वीं शताब्दी में। और जहाँ तक के सहसवान घराने का ताल्लुक है, इसमें आला से आला ध्रुपद धमार के गायक भी पैदा हुए हैं और बीनकार भी पैदा हुए हैं। यानी ये सोचिए कि हमारे ख़ानदान के मतलब जो स्तंभ थे या इस घराने के स्तंभ थे वो थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और उनके नाना थे साहिबुद्दौला और कुतुबुद्दौला साहब। बहुत ऊंचे कलाकार थे और दोनों ही सितार में दक्ष थे और उन्होंने इस कला की बड़ी खिदमत की और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में काफ़ी अरसे रहे और फिर वापस रामपुर आ गए।
2: सितार वादन के साथ साथ बीन वादन भी काफ़ी
3: जी
2: प्रचलित हुआ है।
3: बीन वादन भी
2: जी,
3: क्योंकि उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के
2: जी
3: जो दो भाई थे, दो छोटे भाई
2: जी,
3: उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब
2: जी
3: और उस्ताद अली हुसैन खान साहब अपने ज़माने के उच्च कोटि के यानी वीणा वादक थे।
2: वीणा वादक थे। तो खास साहब, जैसे तो ये ध्रुपद धमार से शुरुआत हुई
3: जी हाँ,
2: और ख्याल गायकी के क्षेत्र में भी बहुत महान कलाकार इस घराने में हुए हैं
3: जी।
2: तो ये रबाब सुरसिंगार भी काफी वादियों का भी
3: जी हाँ, ऐसा है कि जहाँ तक रामपुर का बुनियादी जो घराना है उसमें सुरसिंगार और रबाब भी काफ़ी मशहूर हुआ और उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो थे रामपुर के वो बहुत बड़े रबाब वादक थे
2: जी।
3: जी हाँ, तो इस तरह से इन साजों पर भी उनको बड़ा उबूर हासिल था।
2: तो वादन का गायन पर प्रभाव पड़ा अथवा गायन का भी वादन के साथ कुछ संबंध रहा है, इस बारे में
3: देखिए ऐसा है कि गायन और वादन
2: जी
3: इन दोनों का चोली और दामन का साथ है। लेकिन असली बात तो ये है कि ये जो खुदा ने इंसान को एक साज दिया है जिसको हम गले का साज कहते हैं, तो समझिए कि गाना पहले आया
2: जी
3: और उसके बाद में वाद्यों का आविष्कार बाद में हुआ और इस तरह से गाने की छाया
2: जी
3: साजों पर पड़ती रही। लेकिन एक ऐसी मंजिल भी आई कि वाद्यों की छाया जो थी वो गायन पर पड़ने लगी।
2: पूछना चाहता
3: हूं, अभी जो आपने एक हवाला दिया है ना बीन का
2: जी,
3: तो हमारे घराने में चूंकि बीनकार भी हुए हैं तो बीन के बहुत ही खूबसूरत अंग जो हैं वो हमारे यहाँ की गायकी में सम्मिलित हैं।
2: तो बीन के जो अंग की जो खूबसूरती है
3: जी हाँ,
2: मेरे ख्याल आपका मतलब मीन से
3: मीन है। मीन तो समझिए उसकी रूह है और अच्छा। मीन एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारे ज्योमेट्री में होता है ना रेखा गणित में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, तो अब जैसे हम सुर दो कहेंगे सा गमा पा गमा गरे सा, ये अलग अलग नोट्स हैं
2: जी
3: या स्वर हैं। लेकिन अगर इनको हम मीन से कहेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत लहर आपके सामने उठेगी और उसका आप जैसे कि आवाज का चित्र बना सकते हैं।
2: अच्छा।

0: ख्याल गायकी में
1: जी
0: बीन का जो ये अंग है यानी मींड
1: जी
0: हमारे यहाँ की गायकी में साफ झलकता है
1: जी हाँ, तो इससे गायन के सौंदर्य में वृद्धि हुई है
0: जी हाँ,
1: ऐसा है
0: यानी ऐसा यानी मनहरण लगता है सुनने को, यानी जो हमारे यहाँ एक एस्थेटिक्स है
1: जी
0: सौंदर्य
1: जी
0: जिसको हम उर्दू में जमालियाती पहलू कहते हैं, तो एक तो इसका असर जो है, इस मींड का असर आपका दिल जो है वो मुतासिर होगा, लेकिन और जो सरगम वगैरह का सारी चीज़ें जो हैं उससे वो आपका दिमाग जो है वो प्रभावित होगा या उससे वो उसका रसा स्वादन करेगा।
1: खास साहब, इस गायन शैली की और भी तो कई विशेषताएं हैं
0: जी हाँ,
1: जैसे गमक बहलावा
0: जी हाँ, बहलावा भी ख़ास है क्योंकि विलंबित और तान के दरमियान
1: जी
0: एक तरह से ये एक पुल समझिए, सेतु समझिए।
1: अच्छा,
0: और वो ऐसा है कि बहलावा का मतलब ये है कि बहलाना, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है
1: जी,
0: तो सुरों को बहलाया जाता है, और इस तरह से बहलावा अगर आप सुन लें तो आप तैयार हो जाइए कि थोड़ी देर के बाद में तानों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा।
1: होने वाला है।
0: अच्छा, आपके

0: इसमें खास इस बहलावे में आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक सुर से दूसरे सुर पे हम जाते हैं तो एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम समझिए हिक्का कहते हैं
1: जी,
0: हिक्का यानी सॉफ्ट जर्क।
1: अच्छा।

0: ना
1: ये हिक्का है,
0: जी
1: तो इस तरह से मींड, बहलावा,
0: वाह
1: हिक्का।
0: जी
1: और इसके अलावा इस घराने की एक विशेषता ये भी है, चूंकि इस घराने में टप्पा भी बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है,
0: अच्छा
1: उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब ने बहुत
0: जी
1: अच्छा टप्पा गाया, मुश्ताक हुसैन खान साहब ने,
0: जी
1: उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब ने,
0: जी
1: और आज के युग में जो हमारे यानी घराने के सबसे मशहूर और यानी उम्र रसीदा कलाकार हैं,
0: जी
1: उस्ताद निसार हुसैन खान साहब,
0: हाँ
1: तो

0: अब ये आपने देखा टप्पांग हो गया।
1: खान साहब, अभी आपने उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का नाम लिया, उनका भी गायन के साथ साथ तराना गायन में बहुत
0: जी हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि
1: योगदान रहा है।
0: जी हाँ, कि सही तराना गायकी के वो एकमात्र कलाकार हैं, प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उसके जो कुछ बोल हैं दृढ़तम, तो वो सफाई से निकलना चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो तराने का मजा नहीं आएगा। तो ये एक तराने की एक मुख्तसर से मैंने आपके सामने पेश किया, तो ये भी एक मुख्य अंग जो है। एक मैं और बताना चाहता था, सरगम का भी एक अंदाज एक बहुत ही निराला अंदाज है
1: जी,
0: क्योंकि आवाज तानों में तो जाती तीनों सप्तकों में, तीनों सप्तकों में सरगम का भी जो जो है प्रेजेंटेशन वो भी बड़ा खूबसूरत रहा है। और उसको हम छूट की सरगम कहते हैं
1: जी,
0: गामा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा नी नी नी नी नी दा पा मा गा रे सा तरतीब और एक बेतरतीब सारे सा नी दा पा मा गा रे सा नी सा गामा पा गा मा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा पा मा पा गा मा गा रे सा नी दा दा दा दा दा दा पा मा गा रे सा नी सा गा रे मा गा पा मा दा पा दा मा पा गा मा गा पा मा पा गा मा गा दा पा मा गा मा पा गा मा गा रे सा नी दा पा पा पा मा गा रे सा नी दा पा मा गा मा पा रे सा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर खान साहब। आपने सहसवान गायन शैली की खूबसूरतियों विशेषताओं को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाया और हमारे श्रोताओं को निश्चित ही पसंद आएगा। एक प्रश्न और खान साहब आपसे करना चाहेंगे,
0: फरमाइए,
1: कि ट्रेडिशनल जो हमारे राग हैं,
0: ये है पारंपरिक,
1: पारंपरिक जो राग हैं कामूद काफी और बिहाग आदि अन्य राग, तो जब उन्हें पारंपरिक ढंग से गाया जाता है तो उसकी तस्वीर हमें स्पष्ट नजर आती है समझ में। और आजकल बहुत से कलाकार नए रागों को भी रच रहे हैं
0: जी,
1: तो आपका क्या ख्याल है कि उससे हमारी संगीत में क्या कुछ नवीनता आ रही है
0: जी,
1: और हमारे जो आजकल के जो कलाकार हैं सीखने वाले विद्यार्थी
0: जी,
1: उन पर उस इस प्रयोग का अथवा इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके क्या ख्याल हैं?
0: जी पवार साहब, ऐसा है कि आज जो राग प्रचलित हैं वो किसी जमाने में कुछ लोगों ने उनका आविष्कार किया होगा।
1: अच्छा।
0: और धीरे धीरे वो प्रचलित हुए और अति लोकप्रिय भी हो गए
1: जी।
0: अच्छा, तो असल में बात यह है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं
1: जी,
0: जिसकी रोशनी में रागों का निर्माण होता है। अगर वो नियम सामने रखकर नए रागों का आविष्कार किया जाता है
1: जी,
0: तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें हमारे यहाँ जो रागों की सूची है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए राग आज जो लोग यानी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं
1: जी,
0: वो इन उसूलों पर पूरे नहीं उतरते। कुछ भी नाम रख दिया और कुछ भी यानी जो स्वर समूह है उसको तैयार कर दिया, तो जो ज़्यादातर जो नए नए रागों का जो प्रयोग किया जा रहा है मेरी निगाह में वो संगीत को उससे हानि पहुंच रही है।
1: खैर, तो खान साहब आपसे मिलकर आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने श्रोताओं को जो मेरे यानी छोटे मोटे विचार हैं उनको भी प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाबर सर।
2: सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत आप सुन रहे थे। संगीत सरिता के लिए ये कार्यक्रम वर्ष 1985 में विजय शंकर चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब सुनते हैं हाफिज अहमद खान का गाया राग बिहाग में तराना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं छोटी बहन फिल्म के गाने के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुमीर सेन की। हसरत जयपुरी के बोल और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अनवर का लिखा हुआ और उषा खन्ना का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम शबनम।

0: شكرا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
2: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
2: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
4: ओ रे पथिकवा मत जई हो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
5: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम छोटे नवाब।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ससुराल फिल्म का गाना हसरत जयपुरी है। गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

बुधवार गुरुवार से प्रदेश में मॉनसून की विदाई भी शुरू होने वाली है। सबसे पहले उज्जैन और ग्वालियर संभाग से मॉनसून लौट सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जिलों में तेज धूप खिलेगी, जबकि बाकी हिस्सों में बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। भोपाल में सहकारिता क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जहां आम लोग भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच करा सकेंगे। करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी इस लैब में 100 से ज्यादा मानकों पर जांच की जाएगी, जिसमें मिलावट, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और हैवी मेटल्स जैसी चीजें शामिल हैं। जल्द ही यहाँ जांच की सुविधा शुरू होगी।

संक्षेप में, आज विश्व हृदय दिवस है और इस बार संदेश है कि आप दिल की धड़कन से जुड़े किसी भी संकेत को नजरअंदाज ना करें। WHO के मुताबिक 2022 में दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से हुई है। कटनी, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट के जिला स्तरीय वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण आज शाम 5 बजे किया जाएगा। खंडवा में नवचंदी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय निर्माण की कलाओं का उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान निर्माण की लोक कला, लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुतियां दी जा रही है। धार में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए रवि 2026-27 की तैयारियों के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र में उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना जिला खनिज प्रतिष्ठान की कल संपन्न हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में जनप्रतिनिधि सदस्यों से प्राप्त सुझाव पर चर्चा की गई। उप निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगरमालवा जिले की नलखेड़ा जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 6 और 11 में सदस्य और सुसनेर नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। झाबुआ के गौतम कामण ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर वाहन चालक से स्वयं के व्यवसाय के मालिक बनने तक का सफर तय किया है। मुरैना में निराश्रित गौवंश को लंबे स्किन डिसीज से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टिंडौरी में 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के कान्हा परिक्षेत्र की नकती घाटी बीट के कक्ष क्रमांक 138 में कल एक 11 माह की मादा बाघ शावक का शव मिला है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की और डाक स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
6: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजों में जिद्दी फिल्म से हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दर्पण फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: अरे जल गई जल गई जल गई।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म का गाना। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत, फिल्म का गाना आनंद बख्शी है गीतकार और संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम गंवार।

सुरेली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में रूठा ना करो इस फिल्म से। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: हम है चुंडा हल्दा, इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उलदा रहा है, उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग

0: भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाले दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आर्य भट्ट का जीरो। इस फिल्म के गाने के साथ आवाजें सचित टंडन और परंपरा टंडन की, गीतकार और संगीतकार हैं मनन भारद्वाज।

अगला गाना हमने लिया है बटवारा 1947 फिल्म से, जावेद अली, आनंद जोशी और रब्बानी मुस्तफा खान की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल और ए आर रहमान की है तर्ज़।

हमारी अगली पेशकश नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म से गीतकार हैं सुनील सिरवैया और संगीतकार हैं मोंटी शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए श्वेता पंडित की आवाज में एंजल फिल्म का गाना। शब्बीर अहमद है गीतकार और संगीतकार हैं अमजद नदीम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए विशाल मिश्रा, नकश अजीज, अंतरा मित्रा की आवाजों में भूत बंगला फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोलो प्रीतम की है तर्ज़।

0: श्रोताओं, आज है विश्व हृदय दिवस। हृदय मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये निरंतर रक्त का संचार करके शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाता है। आधुनिक जीवन शैली, असंतुलित खान पान, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान और बढ़ते प्रदूषण के कारण हृदय संबंधी रोग आज विश्वभर में गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। समय पर स्वास्थ्य की जांच और उचित जीवन शैली अपनाकर हृदय रोगों के अनेक जोखिमों को कम किया जा सकता है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। साथ ही नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव का उचित प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनसे बचकर रहें। और तो अपने दोस्तों, अपने शरीर का भी ध्यान रखें और साथ में हृदय का भी ध्यान रखें, और तनाव मुक्त रहने के लिए देश की सुरी धड़कन विविध भारती को सुनते रहें। तो चलिए आपको एक संदेश सुनवा देते हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।

0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
2: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
4: अगर तुम मिल जाओ।
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
5: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
6: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में बागी फिल्म का गाना कुमार के हैं बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज़।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओ, अभी संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिर फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए करण शेम्बी की आवाज में लुका छिपे फिल्म का गाना। निर्माण है गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट अर्थात खाद्य की हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों फसलों की कटाई से लेकर भंडारण तक खाद्य पदार्थों की हानि होती है, साथ ही बड़ी मात्रा में तैयार किए गए भोजन की भी बर्बादी होती है, जबकि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को भूखे सोना पड़ता है। अतः ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक स्तर पर खाद्य पदार्थ की बर्बादी को रोकें। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
4: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
7: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें।
8: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 से विविध भारती।
9: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में ओ रोमियो फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या?

हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ।

0: तेरे खयाला तंदाना ये गोरे गाला तंदाना ये रेशमी बाला तंदाना ये सोला साला तंदाना है तेरे खयाला तंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए रुपया।
1: दोस्तों इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम, बोल दो बापू,
4: बोल दे बेटा
3: बाप।

0: रुपया।
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

बड़ा के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी ना कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

0: महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।
1: वेलकम

ஏன் விடுதுடா?

0: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बा कमाल है।
1: वनकम जी।
2: ओ, पहुंच जाइए ना।
1: अयो, एक मिनट टाइम ना दे, खिड़की बंद करना।
2: क्या है?
1: खिड़की बंद करना जी।
2: क्यों?
1: ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता है ना।
2: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
1: अयो, पहला बोलना ना ऐसा बात। डाय बोला, तुम आना गाना गाना, आना
3: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहा गाना गाना।
4: चल चल
1: देवी, तुम बदाना बदाना।
0: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
5: या कच्चा तुरन

0: 생각.
1: 그 다음,
2: 아이요.
1: 그 다음,
2: 나.
1: 다음, 다음, 다음, 록. 야, 에이.

0: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हो मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आज़ादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना। संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
1: और ध्यान से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम,

0: है यही आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: तुम्हारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब ने बड़े से बड़ी गाली दे ले, पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

¡Vamos aquí!

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल, वाचन स्वर दीपा सिंह। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात सेवा संकल्प अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिन के अवसर पर जिले में यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान में सेवा, स्वच्छता, सामाजिक सहभागिता, हितग्राही कल्याण और युवा नवाचार से जुड़ी गतिविधियां हो रही है। इसी अभियान के तहत अशोकनगर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी कंपनियों ने युवाओं का चयन किया, जिसमें 316 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ और 258 को ऑफर लेटर दिए गए। वहीं स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े 457 हितग्राहियों को करीब 2 करोड़ रुपए का लाभ भी दिया गया। सेवा संकल्प अभियान के साथ जिले में जल जन सेवा यात्रा भी पहुंची। बड़नगर से वाराणसी तक निकाली जा रही इस यात्रा के अशोकनगर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य जल संरक्षण और जन भागीदारी का संदेश लोगों तक पहुँचाना है। अशोकनगर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग की इस पहल के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। पहले चरण में शासकीय महाविद्यालय के 16 छात्रों का चयन किया गया है। आपात युवाओं की एक और जिम्मेदारी की, अशोकनगर में युवाओं को आपदा मित्र के रूप में तैयार करने की पहल की गई है। 18 से 40 साल के कॉलेज विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवकों और तैराकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा और जिम्मेदारी की इसी कड़ी में जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है। ग्रामीण पाठशाला में विद्यार्थियों को 4 तरह के कूड़ेदानों के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों को समझाया गया कि अलग अलग तरह के कचरे को अलग अलग रखना स्वच्छता की पहली सीढ़ी है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी जिले में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम चल रहा है। 5 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों, माताओं और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। इसी बीच अशोकनगर के 9 पोस्ट मैट्रिक कन्या और बालक छात्रावासों में नए मेस शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के जिला स्तरीय 106 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में नए मेस का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। इससे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब बात न्याय की। अशोकनगर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 16 न्यायालयीन खंडपीठों के जरिए 1,298 मामलों का निराकरण किया गया। समझौते के आधार पर निपटाए गए मामलों में करीब 9 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित हुए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी जिले में लगातार जागरूकता गतिविधियां चल रही है। 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जाँच की, पोषण की जानकारी दी और आयुर्वेदिक दवाएं भी वितरित की। इसी तरह वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर अशोकनगर में लोगों को रेबीज से बचाव के लिए जागरूक किया गया। प्रचार सामग्री के जरिए बीमारी से बचाव और सावधानी का संदेश दिया गया। वहीं डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अभियान चलाया। अशोकनगर की पहचान चंदेरी की साड़ियों से भी है और अब इस पारंपरिक हुनर को और निखारने की तैयारी है। प्रदेश का हथकरघा संचालनालय चंदेरी में साड़ी बुनाई कौशल प्रशिक्षण शुरू कर रहा है। 3 महीने के इस प्रशिक्षण में चयनित प्रशिक्षणार्थियों को बुनाई का कौशल सिखाया जाएगा और शासन की ओर से 750 रुपए मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जिले में बहादुरी और मानवता के काम करने वालों को सम्मान देने की तैयारी भी है। गृह विभाग ने जीवन रक्षा पुरस्कार 2026 के लिए योग्य लोगों के चयन के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और जिला होमगार्ड के जरिए ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जिन्होंने किसी की जान बचाने में साहस और सूझबूझ दिखाई हो। चयनित लोगों के नाम और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन भेजे जाएंगे। अंत में बात आस्था की। अशोकनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण पर्व के रूप में मनाया गया। जिले के 4 मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टर साकेत मालवीय ने इन मंदिरों पर श्री कृष्ण पर्व मनाने के निर्देश दिए थे। वहीं इन दिनों जिले में पितृपक्ष में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु नदी और तालाबों में स्नान कर अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं और घरों में श्राद्ध, दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य हो रहे हैं। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: बिल्कुल।
3: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है तो उनको कंसल्ट करना चाहिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं।
3: जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में। और सेकेंडली जो थकावट है ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका। अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए। तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हो जाना, तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब, तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए। और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इशू है, तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच
2: संभावना हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी
3: चाहिए,
2: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना है,
3: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है।
2: जी जी।
3: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए।
2: बिल्कुल। और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है। यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं। तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले।
3: जी, तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट।
2: अरे वाह, कौन सा सुनाई बताएं?
3: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
2: फिल्म चिराग का गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: क्या है।
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
2: जी।
1: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
2: जी,
1: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
2: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में महावारी डीले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
1: जी,
2: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
2: यस, तो सीवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
1: लक्षण है
2: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
1: हो सकता है, तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
2: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसीओ होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैनॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है, तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल। तो ये तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है
1: जी। तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने
2: जी। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली हैं बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज्यादा होते हैं

0: है, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है, तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही जरूरी
1: है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओएस नहीं बोलते हैं हम, पीएमओएस बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण, या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड्स, वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं, तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है।
1: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से महिला को
0: रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड,
1: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं
0: जी,
1: है जी। और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला माँ नहीं बन सकती? ऐसी
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है, जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से। इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में, तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है, यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
1: बदलते हैं।
0: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियां 1-2-3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8-9-10 बजे के पहले उठती नहीं है, तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन।
1: बिल्कुल।
0: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9, 9:30, 10।
1: अच्छा
0: जी,
1: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं।
0: यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
1: हाँ।
0: तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
1: नहीं
0: है
1: आती।
0: और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12-1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रेट होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पांस यानी वजन बढ़ना, नींद क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है।
1: अच्छा।
0: इसलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना, यानी अर्ली डिनर, जैसे 7:30-8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10-10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं। तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
1: नहीं होता है,
0: इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है। और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का।
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना। और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर
0: 100%
1: सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: आज फिर जीने की तमन्ना।

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद, एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला
0: नहीं है, yes. बिल्कुल,
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले, और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं, उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के, जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें, आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं, तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं।
0: ठीक है,
1: तो जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है, प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है, तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होती है, तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है, वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते, तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलोंग विद नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलड यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर आल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक, तो प्रोटीन्स फाइबर्स ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक जो मेन क्रिमिनल, मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है वो ना हो, तो उसके लिए लंच में आप सैलड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें। सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलोंग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चीला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को नहीं होने के लिए।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए, लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए, उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी, बट अगर होता है तो फिर दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है, तो मेथी, जीरा, दालचीनी, पानी, ये सब इसका सेवन, ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है,
1: यस,
0: और छान के
1: यस, बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना। चलो, कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है, लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली, तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना, तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है, तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाएगी,
0: नहीं खाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: डेफिनेटली, मतलब, और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है।
0: और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
1: 100%
0: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का,
1: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है। प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है। सो इट्स
0: अलग-अलग शरीर में अलग,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 days
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: जल्दी
1: होने लगता है, तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में महावारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेके बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कम्प्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जब पीरियड शुरू हो रहा है, दैट मींस अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मींस देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
0: बहुत
1: जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताएं, लेकिन अभी जो एनवायरमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
0: बताते ही हैं।
1: लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
1: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना, कि वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15-20-25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली अनिमिक हो जाएगी उसके। और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है,
0: तो ये भी चिंता का विषय हो जाता है।
1: काफी बार मदर्स आती हैं
0: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए।
1: जी जी जी,
0: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी।
1: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था, क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में।
0: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा जी, ना जी, छोटी जी, बच्ची जी, को जी, कि क्या हो रहा है मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल। और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर्स भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़के तो रोने भी लग जाते हैं, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम दो चार होते हैं, तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए और कितना सावधान रहना चाहिए और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
1: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
0: अलग अलग होती है,
1: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्चे, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से, उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनाक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके एक डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर लें, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज के, जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है।
0: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले गीत सुन लें आपकी पसंद का।
1: जी
0: बताइए।
1: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
0: आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसा आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन्स या चली गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है,
1: जी जी,
0: तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमेन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सरफेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सीवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ MRI, मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट,
0: जरूरी है। yes. इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं। yes.
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है, ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, या जलन होना, या असामान्य स्राव, ज्यादा रक्त स्राव होता है, ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है, और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
1: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज जो लुकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले।
0: अच्छा।
1: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड्स, मतलब मिड साइकिल में है। बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है, या बहुत इची, यस बदबू आना, या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
1: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर।
0: अच्छा। जी, जो एक आम समस्या है।
1: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे, मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, खास करके विलेजेस में। तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है।
0: किसी तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता।
1: जी, बिल्कुल।
0: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, ये भी एक आम समस्या की,
1: ये बहुत ही आम
0: समस्या है। तो ये एक सामान्य है, या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
1: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ, ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है, लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस ही बोलते हैं फाइब्रॉइड्स. तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक. अगर ये सिम्टम्स हैं तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं.
0: अच्छा.
1: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. नो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स,
0: कहाँ में है,
1: कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है.
0: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है.
1: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी. जैसे हम कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट, मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है. वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है, अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं.
0: इसलिए सचेत हो जाना चाहिए और जैसे ही हमें लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसका
1: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है. यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी यू नो 1.5 महीना 2 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का.
0: जी, तो एक गंभीर समस्या बन सकती
1: बन सकती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है
0: नहीं.
1: तो डरना नहीं है.
0: इलाज संभव है इसका.
1: यस, इलाज संभव है और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है. हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं.
0: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं.
1: जी
0: बताइए.
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे.
0: बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में. फिल्म का नाम है अनपढ़.

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
0: रंग तरंग
3: रंग

तरंग। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत बेगम अख्तर की आवाज से, शायर हैं तस्कीन कुरैशी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: ये आवाज़ें थी उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की, शायर नसीम रिफत, संगीत ललित का और एल्बम आगोश।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
1: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आंखों में तेरा ही चेहरा, ये एल्बम का नाम है। आवाज और गीत जय वालिया का, संगीत ललित का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल है मजरू सुल्तानपुर।

0: 다른
1: पिनाज मसानी की आवाज़ है, शायर है गालिब, संगीत मधुरानी का एल्बम आपकी बज़्म में।

रंग तिरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में. कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो.

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, दिल झूम झूम नाचे, इस एल्बम का गाना, गीत और संगीत ललित सेन का। इसी के साथ आज का रंग तरंग ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दिल हृदय दिल शब्द के गाने। आज विश्व हृदय दिवस है तो दिल शब्द के गाने 24 घंटे। इस फिल्म का ये पहला गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बिपिन बाबुल का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना अब आपको सुनवाते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आह।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया। ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया श्री रामचंद्र ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह है महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, फिल्म आज की आवाज़।

0: अरे भाई तालियां उनके लिए।
1: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

दिलाया मैं बचा के पंजाब से, दिलाया मैं बचा के पंजाब से, कितना है प्यार।

0: असर है।
1: सर के इशारे दिल के सहारे मारो ना गुमान से।
0: दिल लाया मैं बचा के पंजाब से। कितना प्यार देखो मुझे।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई श्री रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी। इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर पहुंचेगा।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं मंजू द्विवेदी। आज सबसे पहले आपको जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तो पढ़ ली है और पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें लिख भेजी है। पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहते हैं कि हंसने हंसाने से हमारी और हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है। हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। किसी को हंसाना ये बड़ा कठिन काम है, पर कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जी हाँ, कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जीवन में अगर हंसी का खजाना ना हो तो जीवन खाली डिब्बे की तरह होता है। जो दिल वाले होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, उनके लिए रुपया सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके लिए तो किसी की सादगी, किसी का बांकपन दिल पर तीर चला देता है। कोई चतुर जब हंस की चाल चलता है तो भी माहौल ठहाको वाला हो जाता है। कभी कुछ अटपटे और चटपटे शब्द जब घोड़ा गाड़ी या रिक्शा निराली पर लिखे हों तो भी हंसी आ जाती है ना। तो बताइए, किसने चुराई है आपकी निंदिया? ये है आज की इबारत या टेक्स्ट, जिसमें बहुत सारे शब्द छुपे हैं, जिसमें बहुत सारे गाने छुपे हैं। और विषय की अगर बात करें तो आज अभिनेता महमूद को हम याद कर रहे हैं। और आज विश्व हृदय दिवस भी है। हृदय यानी कि दिल, दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो हम सुन भी रहे हैं कि दिल ने धोखा दे दिया, या दिल हमारे वश में नहीं रहा, दिल पर काबू नहीं रहा, दिल ने अचानक ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं दिल को लेकर, हृदय को लेकर। तो अपने हृदय का, अपने दिल का ख्याल रखिए। और भी बहुत सारे सवाल हमारे होंगे आगे, लेकिन एक साथी की ये बात आपको पढ़ के सबसे पहले सुना देते हैं कि हंसना और हंसाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा का उल्लास है। बिना हंसी या मुस्कुराहट के जीवन को नीरस, रसहीन या मूर्छित कहा गया है। हंसी के बिना मानव पाषाण हृदय के स्वरूप हो जाता है, जिसमें संवेदनाओं और भावनाओं के अंकुर नहीं फूटते। जैसे वर्षों से कोई भूमि बंजर पड़ी हो, श्रृंगार रस में मुस्कान लिए हुए चेहरे की सुंदरता के लिए अनेकों उपमाएं हैं। कहीं पर खिलते हुए कमल या दामिनी से चपलता, कहीं चांद सा रोशन चेहरा जैसे शब्द गढ़े गए हैं। मुस्कान, हंसी आंतरिक सौंदर्य का बाह्य प्रकटीकरण है। दूसरों को हंसाना बहुत कठिन होता है, ये एक उत्कृष्ट कला और साधना है। जी हाँ, ये कला है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो हो सके तो आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाइए, मुस्कराहट लाइए, किसी के हंसने की वजह बनिए, और फिर देखिए आपके चेहरे पर अपने आप हंसी या मुस्कुराहट आ जाएगी, और उससे आपके दिल की सेहत भी तो अच्छी रहेगी ना। चलिए गीत सुनते हैं। नीलकमल फिल्म का ये गाना सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे। मन्ना डे की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल,

एक साथी की बात है कि आज तो सुरीला सफर हम सब हंसते हंसाते तय करने वाले हैं। आज कॉमेडी किंग महमूद जी की याद का दिन है, उनको मेरा शत शत नमन। हंसना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि श्वास लेना। हंसने से तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो दिल को बेहद सुकून और खुशी मिलती है। हंसते गाते कट जाए ये दिन। और एक साथी लिख रहे हैं कि हास्य अभिनेता महमूद जितने बेहतरीन कॉमेडियन थे उतने ही गहरे भावुक अभिनेता थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक दिव्यांग बच्चे के गरीब पिता के रूप में उनके मार्मिक अभिनय ने हर दर्शक की आंखें नम कर दी थी। महमूद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो दिल की और हंसने हंसाने की बात ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले धर्म पत्नी पास बैठकर बोली कि सगाई के बाद और शादी के शुरू के दिनों में आप दिल से मेरी कितनी तारीफ करते थे। मैंने कहा कि वो तो अभी भी मैं करता हूँ। फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज़्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं शुरू करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नजर आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा, इस फिल्म का ये गाना है। मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि मैं अपनी योग क्लास में रोज हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफ़र की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह मैं 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद मैं अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है, और ये खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है। सोचिए अगर ये खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी, आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और ख़ास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है, बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे, और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाज़ें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है, अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

भैया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। The whole thing is that

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी या अपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई ज़रूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज़ आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज़्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए, शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है. हेल्थ इज़ वेल्थ. सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते. ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए. एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया. जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस खत्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ. फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गया. एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए. जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले तो आपको लाभ अवश्य होगा. एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है. हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है. सबसे बड़ा रुपया. इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने 4-5 लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था. वो फोटो आज भी देखती हूँ तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है. और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते हृदय, क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते. अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है. यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है. एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है. किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है. अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं. कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. चलिए धन्यवाद आपका. इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है. चाहे कितनी ही हंसी की बात हो वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं. तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा. चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और महमूद की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या

वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।

काले हैं तो क्या हुआ।

दंडाना क्यों पास न आते दंडाना या मारिय माता दंडाना दिल तोड़िए घाता दंडाना तो मैं किधर को जाता ही दंडाना क्यों पास न आते दंडाना या मारिय माता दंडाना दिल तोड़िए घाता

0: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने

सुना, एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहाके लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूँ कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है। तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे जरूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसता मुस्कुराना बहुत जरूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो खत्म ही ना होता। एक जमाना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए, आरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते? चलिए गीत सुनिए।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये पढ़ते पढ़ते गीत कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए, वैसी टी शर्ट और ड्रेस पहनकर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी इस गीत में, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी, और हमारे प्राचार्य थे उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार, ये गाना सुनवा के जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है, चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी बरसात से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो है वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ, और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है, और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और महमूद की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: Uriah!

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होती होंगी कार्यक्रम के संबंध में, तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जिस कार्यक्रम के संबंध में जो भी जानकारी हो या जो भी आप कहना चाहते हैं, आप पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। आपके पत्रों से हमें मार्गदर्शन मिलता है अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने में। आपको जो भी कार्यक्रम पसंद आता है या जिसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, सबसे पहले उस कार्यक्रम का नाम लिखिए, उसके बाद लिखिए द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल। आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी भी 2 बजने को है। तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर का एक गाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी फिल्म साजन का एक गाना, और आवाजें हैं इसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: रेशम की डोरी

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह असीम गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरू ढांडा की जीत ने नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यह जीत भारतीय युवाओं को निशानेबाजी में जाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में लगभग 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज की कैबिनेट ने 24,500 करोड़ के कामों को स्वीकृति दी। दमोह कटनी 105 किलोमीटर का मार्ग जिसकी लागत 4,470 करोड़ रुपए है, इसकी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सिंगरौली में पूर्व में 450 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ बंदा था, वहां पर 150 सीटें MBBS की होने के बाद 155 स्तरीय का अस्पताल एक नया जो उसके साथ में रिविजन होगा, 372 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: बुरहानपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शाहपुर स्थित सांदीपनी विद्यालय में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जनसेवा, सामाजिक सहभागिता और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं नेपानगर के शासकीय महाविद्यालय में भी छात्र छात्राओं ने आकर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आमजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया। कटनी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान विशेष अभियान का 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजन एवं अनाथालय सेवा तथा नेत्र परीक्षण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और सैनिक परिवारों का सम्मान तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पुलिस लाइन में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में महिला

0: एवं राहत नीति है उसके पर भरोसा करके करीबन 13 नक्सलाइट्स ने मध्य प्रदेश में और सीमावर्ती एमएमसी क्षेत्र में करीबन 45 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया। में जितने भी नक्सल्स यहां पर सरेंडर किए उन लोगों के बैंक खाते भी खुले हैं और उसमें उनको जो फाइनेंशियल राहत वो मुहैया कराई जा चुकी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो भविष्य में अपना जीवन यापन कर सकता है। अधिकतर लोग क्योंकि गाँव के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से गाँव को छोड़ चुके थे, तो वहां पर खेती किसानी करना, अन्य चीजों को करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे हार्वेस्टर चलाना, ट्रैक्टर चलाना, कोई जो बीज है उसकी देखरेख करना, फर्टिलाइजर्स का यूज, इन सब के बारे में भी इनको जानकारी दी जा रही है।
1: अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में अगले चार दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद उपनिर्वाचन में सुबह 11 बजे तक 47.88% मतदान दर्ज किया गया है। कटनी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में विश्व रेबीज दिवस पर रेबीज प्रबंधन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुरैना में चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए कलेक्टर और एसपी ने देर रात विभिन्न गांवों का दौरा कर एसएएफ चौकियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में 30 सितम्बर से इंटर स्कूल अंडर 14 डायरेक्टर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ में शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 25 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का समापन हुआ। बुरहानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 1 से 7 अक्टूबर तक बकरी एवं पोल्ट्री पालन पर 7 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण जारी है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री

0: मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरे होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सरायकाले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
2: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
3: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किए, उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
2: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
4: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिला लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
5: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाए वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
6: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाए वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
7: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलू सिरानी का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर

से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम बिंदिया

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बंबई का बाबू। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का
1: नमस्कार।
2: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी है और मंजरी भी और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात।
2: और आज विषयों की बात कर ले हम सबसे पहले।
1: हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे बातें करते रहेंगे दिल से तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
2: तो तुमने भी
1: विषय की बात कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
2: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
1: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज के दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना

0: खाना खाएंगे अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे जी। तो इस तरह की
1: अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है, या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
0: बिल्कुल तो, और मंजू जी राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें तो राई रुकेगी नहीं, वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखे।
0: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी है और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है, संगीत कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
0: आपका इशारा हम समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजरी ये गाना हमने सुना, दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार, हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजरी जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, चाहे खुशियों के दिन हो, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहां 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो, कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ेगी, तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
0: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके।

0: बंधन कर सकते हैं, योग ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जाँच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते
1: और
0: हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसी और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए। यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं, और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है।
1: जी।
0: तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे, तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहाँ ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: हाँ, और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती
0: है। देखिए रखना तो जरूरी है ही क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम देखिए समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी की मुस्कान और ठाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब

0: डालते हैं लंबे सफर पर।
1: एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद। और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर के में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट्स आप यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत

0: अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलवीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है और उन्होंने भारत में ऑफ बीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलवीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में PGDM यानी कि MBA की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
0: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
1: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वी रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
0: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसोर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसोर्ट में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
1: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है। दूसरा, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। दूसरा, जब उनका घर वही है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुंचाना, ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलवीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया। और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
0: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है। जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली है सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
1: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
0: जी,
1: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं, या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें, या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है, या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम

0: करेंगे तो अरे हम हमको कौन पूछेगा,
1: कौन पूछेगा
0: या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ही लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

0: तो मंजरी गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हो, कुछ तो हम खाते ही है पीते ही है। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कार में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे।
1: बिल्कुल, और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने में लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींच कर बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, उन दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती, गेहूं की बालियां लग रही है, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर मन खराब होता है कि नहीं एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते हैं।
0: बिल्कुल, किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। हमारे साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसमें जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर में जाते हैं वहाँ की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहाँ की उनकी बात की, वहाँ दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम ले और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती है, बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूं,
1: कैसे खा सकते हैं आप सोचिए,
0: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है। और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता
1: वो
0: है।
1: तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टॉल होते हैं कि सब

0: तो नहीं खा सकता कोई, तो ठीक है आप उन्होंने लगाया ये आप उनको अपना अपनी तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्य का स्वागत हिसाब से करें वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ खाना होता है वहाँ दीवारों पर लिखा होता है खाओ मन बचाओ नकन और इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना जूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में आपके लिए भोज का इंतजाम किया है आयोजन किया है तो उसके खाने की आप कद्र करें,
1: बिल्कुल
0: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
1: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगे किसान की मेहनत और भी जाती है। और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
0: और हम लोग पहले गीत सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारा दिल नहीं करता है
1: बिल्कुल फेंकना,
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं,
0: हमारे भी होश उड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए, हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप उसमें डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजिया भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल
0: कटलेट भी बनती
1: है, तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दे, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए।
0: बिल्कुल, है ना? ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो दूसरों को दे दें, जो भोजन आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये एक कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: मतलब जैसे कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती है ना वैसी चटकेगी। कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे देखो मंजरी, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद होता है,
1: उन्हें मजा आता है चटकाने लेके, उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते ना मुंह से बात निकली किसी ने कहीं कहीं तक कही, लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
0: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5-6-10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका रहता है। यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता है।
1: तो बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी की, अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
0: लेकिन ये संभव नहीं होता।
1: किसने
0: किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात ये है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे।
1: अच्छा है कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें फैलाने दो जिसको फैलाना है।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना ना करें बल्कि जो आपके पास समय है जो ऊर्जा है उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं ये आपके लिए फायदेमंद होगा और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं
1: बिल्कुल सही
0: ना थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा
1: बिल्कुल सही बात और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए बात चाहे राय जितनी हो समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने और एक लिखते हैं कि राय का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राय का पहाड़ बना ले उसकी बातों को जवाब ही मत दे खामोश हो जाए तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना वो बहुत तेज होती है तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है तो कहना चाहिए कि राय एक और लिखते हैं कि राय का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें बहुत ज्यादा आप खींचे मत इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है तो हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं

0: खाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राई से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: तो किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और
3: हाँ, पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्न के बारे में बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्न का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्न का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहां पर बर्बाद नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी सी बात है।
3: हमारे साथी लिख रहे हैं है कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्न प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
2: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
3: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
2: और एक हमारे साथी और देखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंका।
3: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
3: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और खासकर उस वक्त तो, मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किया, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो, मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने, मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, एडी। तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर, मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे।
1: पर फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर?
2: हाँ,
1: बचपन से
2: वो देखा था, तो उस वजह से, मतलब मेरा, मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी वजह से हूँ।
1: जी जी जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम नजर आए?
2: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में, दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा, कैसे बनी कहानी।
1: अच्छा।
2: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था। हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको, ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था। अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहां पर गए थे और मेरा, मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें, डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा, मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग बोल के उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है। तो मुझे डरना ही था, इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला अरे ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनालिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है।
1: नहीं, आप जो हैं, जिस भी पात्र में ढलते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
2: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर एसएससी बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया, और दो साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में तीन साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था
1: जी।
2: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम। वहाँ काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
1: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
2: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना, स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो फिर वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में उन्होंने भी एंट्री मारी थी।
1: अच्छा।
2: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया। फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। हाँ, उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
2: मेरी पसंद का कोई गीत? यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर।
1: अच्छा।
2: गमन से
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे?
2: अरे वो तो

0: क्या बात है सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं
0: नहीं नहीं हर गीत तो हम नहीं गवाएंगे आपको अगर आप ऐसा चाहेंगे तो
1: हाँ कि बच्चों के बोलते हैं कि महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो तो मैं महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ नहीं मैं गोवा में रहता हूँ
0: नहीं नहीं आप बेफिक्र रहिए
1: मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने,
0: अच्छा,
1: मेरा पहला काम जो है
0: पहला
1: वो
0: काम
1: एज
0: जो
1: एन
0: था,
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी,
0: हाँ,
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में रांची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नव कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिंपल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश
0: जी
1: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मज़ा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है।
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
0: अच्छा
1: योगदान है। तो
0: जी,
1: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
0: झुकाव,
1: उस तरफ
0: रुझान।
1: बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था,
0: जी
1: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था रांची प्रोडक्शंस में, वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
0: जी
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
0: कमांड है।
1: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब MTV के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
0: अच्छा

0: लग गया।
1: जी
0: फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज।
1: जी
0: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे, उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मैंने वहां पर सीखा। बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी क्या बात है, क्या
0: थैंक
1: बात है,
0: यू।
1: बहुत खूब।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए।

0: गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था, 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था। और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते। बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब है वो बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ, इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब

0: में स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था
1: जी,
0: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर. फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था. तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैंने बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए.
1: अच्छा.
0: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने, मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए. और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी. तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी हैव एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ. मतलब मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा. मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता हूँ.
1: और जब तक है जहाँ उससे भी आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना हुआ?
0: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था. और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले. एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था
1: जी.
0: तो फिर से मुझे, क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी. एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज एबीपी प्रोग्रामिंग. और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया.
1: अच्छा.
0: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो. तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया. तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके सीन्स के साथ ऑडिशन दिया. फिर वो हुआ, उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो मैं प्ले करने वाला था उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए. और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था.
1: अच्छा?
0: उस वक्त वो शानू की असिस्टेंट थी.
1: हाँ हाँ हाँ.
0: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
1: मौका
0: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था और ऑडिशन देके आ जाता था. तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है. तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ. तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट. बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या. तो मैंने बोला ठीक है एक बार और ले लो. तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया. तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है.
1: अच्छा,
0: 2 दिन
1: उसी के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था.
0: हाँ हाँ, सेम रोल. अच्छा, कहीं मैंने इतनी बार ऑडिशन लिया. हाँ. और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग, दोनों शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था.
1: वो कुछ अलग,
0: और मैं उस वक्त एकदम ऐसा था 90 किलो का.
1: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है? बार बार राउंड्स देने पड़ते हैं?
0: हाँ, जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म.
1: अच्छा.
0: में ऑडिशंस के अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत जरूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था. ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का. सिर्फ मैं MTV में मैंने मतलब काफी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा MTV बकरा करता था. अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी. तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान, और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ.
1: बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना कहीं.
0: बहुत सारे.
1: तो कैसा महसूस

0: वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आप कि नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, आगे और कोशिश
1: वो
0: करेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत। और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना, वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
0: बिल्कुल.
1: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब
0: हम सब
1: इसमें
0: साथ
1: तुम्हारे
0: में
1: साथ
0: हैं.
1: में हैं। तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, बस
0: बिल्कुल.
1: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा।
0: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
1: जी
0: में, तो
1: हाँ
0: वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने. उसमें डायलॉग भी है
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: कि
1: उसके
0: मेरा
1: डायलॉग
0: जन्म
1: मैंने लिखे
0: ही,
1: हैं फिल्म
0: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि
1: के।
0: मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ
1: यस
0: है.
1: यस,
0: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके बारे में
1: फिल्मिस्तान
0: थोड़ा सा.
1: मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंद्रास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहां पे 3-4 महीने जो मैंने वहां पर गुजारे थे, उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे, और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया, और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ, उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है। अब मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में, मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला, उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया, और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी आया,
0: फिल्मिस्तान.
1: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई, जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
0: बिल्कुल. कहते हैं ना, जिसे आप चेज करते हैं वो
1: हाँ
0: मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिल
1: वो
0: जाता
1: मिल
0: है,
1: जाता है, तो वही
0: ऐसा
1: हुआ मेरे
0: कुछ.
1: साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान ही हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
0: बिल्कुल. यहाँ पर आपके पसंद का गीत.
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था, जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को.

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी मतलब बहुत मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोड़ा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है।
0: भी आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा। बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था मैं उसे मतलब भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा। और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: मतलब
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में जो है
0: में।
1: मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे में बच्चों की तरह नाचता
0: जो कि हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा,
1: था
0: बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
0: पैदा
1: हूँ, अब जब मैं लोगों
0: हुआ
1: को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है और उसमें
1: जी
0: भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं के
1: हाँ
0: साथ काम किया है।
1: बिल्कुल
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
1: बहुत।
0: कैसा ये
1: हाँ
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चाली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ, और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें, और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी, यानी वो भी नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है
0: मैं प्रोड्यूसर
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम
0: हूं
1: सिंह चार्ली का हूँ, जो
0: जी।
1: एक खूबसूरत फिल्म है, और
0: बिल्कुल।
1: यस
0: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की, 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
1: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं,
0: जी,
1: वही रचा
0: और हम
1: बसा है
0: उससे
1: अंदर।
0: काफी रिलेट कर पाते
1: हाँ
0: हैं।
1: टोटली रिलेट कर पाते हैं, और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं, इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो
0: हाँ,
1: किया
0: मेहरूनी
1: है,
0: की बात करता है, हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
0: जी जी जी जी
1: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाए उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक वो हाँ मिडिल क्लास वाला, क्या
0: और
1: कहेंगे
0: दर्शकों
1: उसको,
0: से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ाव
1: इमेज तो
0: आ
1: है।
0: जाता है।
1: हाँ
0: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
1: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
0: बिल्कुल,
1: इतना यकीन है, वो
0: वो
1: मुझे
0: सुनवा देते हैं, वो गीत
1: प्लीज
0: हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी हाँ,
0: आपकी.
1: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन.
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर खत्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के जरिए, जब तक है जान के जरिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश आबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं, और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब
0: बिल्कुल.
1: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी, और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फोन आया और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे, नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
0: कंफर्टेबल है.
1: कंफर्टेबल हैं, तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको, फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे,
0: जी.
1: फाइनली फिर वो जेके जो है जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया, और फिर जब आया जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है. और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था. जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन वन और वो ओटीटी पर, मतलब एक एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे.
0: बिल्कुल.
1: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह. सीजन टू आया और रिस्पांस जो है वो डबल हो गया. तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया. स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया
0: जी.
1: और फिर काम और मिलता गया. लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई और मतलब वो मेरी जिंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है फैमिली मैन. और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है.
0: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
1: नहीं, तो लिखी हुई होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा. और सुमन कुमार जो है वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे. तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, लेकिन राजन डीके जो है ना, हाँ, वो कभी कट नहीं करते हैं. जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था, उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते. और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम. तो वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता.
0: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
1: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है. उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोस पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं. कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में. और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है. मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की. राजनी के बहुत हमें मतलब आजादी देते हैं, जहां पे हम कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते कंट्रोल. फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में. मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है. आज मनोज सर के साथ शूट है, राजन डीके हैं और मैं जेके बनूंगा और मजेदार कुछ कमाल करेंगे. और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है. तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर रहा हूँ.
0: हमें भी इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें.
1: थैंक यू.
0: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है? स्टंट्स आप करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर?
1: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते हैं. और वो कोई बोलता भी नहीं है कि आप करो. अगर डिफिकल्ट होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं. और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहां पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं,
0: यूज्ड टू हो जाते हैं.
1: कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है. जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था और वहीं तो वो पूरा शॉट था. तो मैं टेबल पे गया, फिर वहां से जमीन पे गिरा. लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है.
0: बिल्कुल.
1: तो वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है. मेरे तो नहीं है.
0: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से, कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से?
1: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ. 2 सीन्स है मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में. तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया. असरानी जी का आखिरी सीन था वो मेरे ख्याल से, उसके बाद उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ.
0: जी, जी, जी, जी.
1: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया
0: जी,
1: सैफ अली खान साहब के साथ. बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो.
0: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनाना चाहते हैं?
1: किशोरदा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं जो कि है सैड सॉन्ग लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज

0: उन्होंने की है जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन क्योंकि जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहां पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है, यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए। कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया। काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर गेम में है ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं इसको
0: कमाल हो जाएगा
1: बहुत। हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है तो मुझे पता है लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना चाहूंगा, जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आरडी बर्मन जी की लाइफ पर फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जिसे बोलते हैं, मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ, कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही,
1: फिल्में बहुत पसंद है
0: जी,
1: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ और बहुत मजा आया बातचीत करके।
1: थैंक यू।
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी, और आप बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में, जिन मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तेरा जिक्र छेड़ू तो लफ्ज सवर जाते हैं, तेरा नाम लिखूं सफे निखर जाते हैं, तुझे सोचूं तो ख्याल भी गजल हो जाते हैं, तुझे देखूं तो वक्त भी ठहर सा जाता है। तुम मिले तो दिल को घर मिला, मेरे वीरान ख्वाबों को शहर मिला, तू मिला तो सुकून मिला, अब ना कोई शर्त है ना कोई हिसाब है, तेरे बगैर ये जिंदगी अजाब है, हमने चाहा तुझे इस हद तक के तेरे पास ही होगा, जरा फिर से देख मेरे सीने से दिल आखिर गया तो कहाँ गया।

एक तमन्ना है कि फकत मुझ पे ही मेहरबान रहो। तुम किसी और को चाहो तो बुरा लगता है। मेरी चाहत का तकाजा है कि मेरे साथ रहो। गैर का हाथ जो थामो तो बुरा लगता है। शब वो रोज परवाह है तुम्हारी। तुम किसी और को सोचो तो बुरा लगता है। ये मेरी रूह तरसती है तुम्हारी खुशबू को। तुम कहीं और जो महको तो बुरा लगता है। क्या करूं मैं, आदत हूं उसकी, वो जरूरत है मेरी। मैं धड़कन हूं उसकी, वो जिंदगी है मेरी। वो ख्वाब है मेरा, उसकी मोहब्बत हकीकत।

0: दीवाने हो जाए जिसे पढ़ के हम, कुछ ऐसा तो एक बार लिख। तू बस मोहब्बत लिख, कोई सवाल मत लिख, मेरे नाम के साथ अपनी हर बात लिख, अगर हाथ में हाथ हो तो उसे जिंदगी लिख, मेरे हिस्से में अपनी कायनात लिख, मुझे देखकर जो दिल में आए वो ख्याल लिख, ना फरियाद लिख ना कोई शिकायत लिख, मुझे दिन लिख तो खुद को मेरी रात लिख, लिखना है तो बस इतना लिख, मुझे अपना हमसाया लिख। सुनो मुझसे ये अब नहीं होता, दलीलें दूं मिसालें दूं, तुम देखो ना मेरी आंखों में लिखा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है।
1: प्यार सिखा दूं?
2: सीखना

ऐसा लगता है हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को हमारा पता याद है। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसने रुख से हटा के बालों को, रास्ता दे दिया उजालों को। जाते जाते जो मुड़ के देख लिया और उलझा दिया ख्यालों को। एक हल्की सी मुस्कुराहट से उसने हल कर दिया सवालों को। मर गए हम तो देख लेना तुम, बहुत याद आएंगे दिल वालों को।

कदम उठ गया रवानी में, दर्द फिर आ गया कहानी में। कोई तो चांद को सिखाता है डूबना रोज रोज पानी में, सिर्फ तूने निगाह फेरी तो मोड़ आ गया कहानी में। उसकी आंखों में हमने डूब कर देखा, तिश्नगी बढ़ गई है पानी में।

चलो आओ मिलकर हम बनाए एक नई दुनिया मोहब्बत की। तुम अदा बनकर मेरी आँखों में रहना, मैं सुकून बनके तुम में, तुम दवा बनके मेरी सांसों में रहना, मैं शिफा बनके तुम में, तुम वफा बनके मुझ में समा जाना, मैं मोहब्बत बनके तुम में। उसने कहा मंजिल मुश्किल है, हमने कहा चलो साथ चलते हैं। उसने कहा मोहब्बत हो जाएगी, हमने कहा चलो मोहब्बत करके देखते हैं। उसने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, हमने कहा मोहब्बत वफा है। उसने कहा छोड़ तो नहीं जाओगे, वादा करो हमसे, हमने कहा जिंदगी बेवफा है।

0: अपन
1: है। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात

0: इतनी अब दीजिए सलमा को इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: टिकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
0: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार श्रोताओं हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने
2: लिखते हैं शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने लिखा है अजीत जी विमलेश जी सादर नमस्कार
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहसपुर से छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश साहू रामकिशन साहू दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का
1: और वो लिखते हैं प्रिय उद्घोषक जी मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगा थे शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है लिखते हैं विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया जिसमें आपने एक कहानी सुनाई वो कहानी थी बुद्धिमान किसान हमें बेहद अच्छी लगी इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए ये सुनवाने के लिए मैं एनसीईआरटी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला भारत के बहादुर बच्चे
2: जी हाँ श्रोताओं इस श्रृंखला के दो एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के दो ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया
1: तो आज सुनिए श्रोताओं एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया
2: श्रोताओं उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था
1: मित्रों ये घटना है 12 मई 1997 की मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई
2: ओ क्या हुआ था
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा किशन तैरना नहीं जानता था वो पानी में डूबने लगा
2: श्रोताओं मेघराज तैरना जानता था उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया
1: लेकिन विमलेश जी एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी
1: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा
2: अजीत जी स्वाभाविक तो है थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना
1: तो विमलेश जी क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया
2: जी वो बचा पाया पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की किशन की जान बच गई
1: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा
2: नहीं अजीत जी यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है मेघराज ने किशन को तो बचा लिया लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई
1: जी हाँ श्रोताओ मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली लेकिन अपनी जान दे दी
2: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं
1: जी हाँ श्रोताओ मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया
2: जी
1: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया
2: जी
1: आइए श्रोताओं अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या-क्या संदेश या सीख मिलती है
2: जी तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है कहावत है ना सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है
1: श्रोताओं मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है
2: बिल्कुल सही कहा जीत जी बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है
1: जी कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे
2: तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से
1: आज का प्रश्न है बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
2: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं
2: जी
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी
3: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे बीरबल उन्हीं में से एक थे वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं एक बार की बात है अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे सर्दी के दिन थे गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था
4: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं हां
3: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ उन्होंने उस व्यक्ति से कहा
4: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा
3: वह मान गया अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया बादशाह ने आश्चर्य से पूछा
4: हैं तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे
3: उसने नम्रता से उत्तर दिया महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा बादशाह ने कहा
4: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा
3: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा फिर वे बोले
4: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं
3: जब बादशाह बीरबल के यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है बादशाह ने हैरानी से पूछा
4: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है हांडी तो आग से बहुत दूर है
3: बीरबल ने उत्तर दिया
4: हुजूर अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती
3: अकबर को बात समझ में आ गई उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए-साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाले का भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हमें
3: तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: चलो चलो देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा?

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे।

0: que voló.
1: साहब साहब वो देखिए घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
2: फतेह सिंह अभी उन्हें और पास आने दो,
1: जब पास आ जाएं तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
2: जी सर।
3: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
2: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक

0: और याद पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
1: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे? उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! हुकुम सिंह
3: जी सर,
2: एनर्जी सामान बस छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
0: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
1: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
5: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ, मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
5: अच्छा,
4: सर ये रही मशीन गन।
5: हुकुम सिंह, एक काम करो
4: जी,
5: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर,
5: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को,
4: जल्दी करो।
5: जी सर, बांध दिया सर, ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ।
4: हाँ सर, बांध दिया।
5: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ ले, हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर,
5: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
0: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर, संभल कर।
5: सर, यहाँ सर की गाली थे।
4: सर,
6: कालिका माता की जय।
1: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगे। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
6: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
1: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपने पेट पर लादे हुए ऊबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
6: साथियों, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
5: साहब,
6: तुम लोग आगे निकलो।
4: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
6: साहब, नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे।
5: अपनी जान बचाओ।
4: नहीं साहब।
5: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
4: नहीं साहब,
5: नहीं आदेश। इट्स एन ऑर्डर
4: सर।
5: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों।
0: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
1: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
3: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
1: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हें दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
0: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीले भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर. आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र. शाम के 6:30 हुए हैं. श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत.

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

0: संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच

0: भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: Akashvani at 90.
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: के बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह
1: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता,
0: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
1: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
0: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
1: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफा में पत्थर गिरने के बाद श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद। विशेषज्ञों की जांच के बाद खुलेगी गुफा। और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कमजोर रहेगा बारिश का दौर। 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया। इनमें पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं।
1: अग्निवीर हमारे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के 5 विभागों में जहाँ पर वर्दीधारी सैनिकों की भर्ती करी जाती है, वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल के प्रहरी तथा आबकारी के आरक्षक, इन 5 विभागों में 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह एक मध्य प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत है।
0: वहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए अगले 5 वर्षों में 5,329 करोड़ रुपए और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की गणवेश राशि के लिए 348 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में विद्यार्थियों को 12 किलो गेहूं 5 रुपए और 3 किलो चावल 6.5 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता है। नई व्यवस्था से करीब 52 लाख रुपए सालाना अतिरिक्त का भार राज्य सरकार वहन करेगी। भोपाल की मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स में महिला ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने एशियन गेम्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीरू ढांडा को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नीरू की यह उपलब्धि देश और प्रदेश की बेटियों तथा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। तो वहीं दूसरी तरफ आज भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम ने 3:29.69 के समय के साथ रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि बहरीन की टीम 3:30.21 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। ये एशियन गेम्स 2026 में भारत का एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक है। प्रदेश में आज पंचायत उपचुनाव के तहत 103 पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 79 सरपंच, 5 जिला पंचायत सदस्य और 4 पंच पद शामिल हैं। आगरमालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष के लिए भी मतदान कराया गया। वहीं झाबुआ और रायसेन जिलों में भी मतदान हुआ। अधिकांश स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न रहा। पंचायत उपचुनाव के लिए मतगणना 3 अक्टूबर को होगी, जबकि जिला पंचायत और पंच पदों के परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं, जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर को सामने रखा है। तो आइए जानते हैं कि आगरमालवा जिले में मुद्रा योजना कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है।
3: छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय करने वाले कारोबारियों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर किए गए व्यापार से उनकी आर्थिक स्थिति

0: मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बारे में पता चला। मैंने बैंक ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन अप्लाई किया, वहां से मुझे लोन मिला। फिर मैंने अपने खुद का टेलरिंग का बिजनेस डाला और उस बिजनेस में मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं। मेरा काम अच्छा चल रहा है, घर चलाने में भी आसानी हो रही है।
1: जिले में ऐसे अनेक हितग्राही है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर अपने जीवन में बदलाव की बहार देख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
2: वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं और भारतीय ज्ञान परंपरा का संदेश दिया। वहीं इस अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक निकाली जा रही जन जल यात्रा आज राजगढ़ के सारंगपुर पहुंची, जहां पर कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने यात्रा का स्वागत किया। इस अभियान के तहत मुरैना नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और धार जिले के धामनोत शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन उत्सव का आयोजन भी किया गया। प्रदेश में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत आयोजित इस अभियान में स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजनों और अनाथ बच्चों की सेवा, नेत्र परीक्षण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वृक्षारोपण और सैनिकों के सम्मान तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता जैसी 9 गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा से होगी। वहीं 3 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविर, 4 अक्टूबर को वृद्धाश्रम और अनाथालयों में सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 9 अक्टूबर को वृक्षारोपण और सैनिक सम्मान तथा 10 अक्टूबर को विद्यार्थियों की सहायता की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती एवं महानिदेशालय के निर्देशानुसार आकाशवाणी भोपाल में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज पौधरोपण किया गया। आकाशवाणी भोपाल परिसर के उद्यान में 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह के साथ पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे रोपित कर उन्हें पानी से सींचा। इस अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा वर्धन, उपनिदेशक अभियांत्रिकी एस के श्रीवास्तव, स्वच्छता ही सेवा अभियान के नोडल अधिकारी सहायक निदेशक देवेंद्र कुमार सक्सेना, कार्यक्रम प्रमुख शुभम तिवारी, विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रमुख आनंद सिंह उद्दे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अब्राहम थॉमस, सहायक अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार सचदेव सहित केंद्र के अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 21,500 रुपए किए जाने पर इंटर्न्स ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना है। इंटर्न्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुष्पगुच्छ भेंट किया। वॉइस ऑफ इंटर्न्स के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्टाइपेंड में वृद्धि उनके परिश्रम और मरीजों की सेवा में योगदान के प्रति सम्मान है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमबीबीएस इंटर्न्स अस्पतालों में मरीजों की सेवा, आपातकालीन चिकित्सा और अन्य जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाते हैं। सतना जिले के चित्रकूट स्थित प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी गुफा मंदिर में पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना के बाद श्रद्धालुओं का प्रवेश 4 दिन से बंद है। लगातार बारिश के दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गुफा में गिर गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गुफा बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों की टीम के निरीक्षण के बाद ही गुफा खोलने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई भी सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। बुधवार गुरुवार से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के संकेत हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना के शासकीय महाविद्यालय कैलारश में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत इटारसी रोड स्थित कुनबी मंगल भवन में 30 सितंबर को प्रातः 10 बजे से विद्युत शिविर का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर वनमंडल के अंतर्गत आने वाले 5 वन ग्रामों कुदवारा, सौठी, दक्षिण बरेली पठार, गणगोरखपुर और सेमरा को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया जारी है। छतरपुर में 37वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दलखेड़ा के छात्र आदित्य ने 6 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और गुना के रेलवे स्टेशन पर भोजनालय की निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: टिकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
0: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। कार्यक्रम किसानवाणी के लिए श्रोताओं आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से।

0: जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
3: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
4: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
2: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
4: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
2: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
4: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी जनों को रीता बहन के दो हाथ जोड़ के राम राम। किसान भैया हरो और बन्ना हरो। बीज केवल खेती की शुरुआत नहीं होते है बल्कि जे हमारी कृषि विरासत को भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते। अपने क्षेत्र के उपयोग बीज को संरक्षण सही तरीका से भंडारण करवो और जरूरतमंद किसानन के लाने उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवो सामुदायिक प्रयास से ही संभव हो सकत है। और जे प्रयास करवे को कहो जात है सामुदायिक बीज बैंक। अगर हम ये संक्षेप में कहें तो सामुदायिक बीज बैंक एक ऐसा स्थानीय भंडारण केंद्र है जिसमें किसान पारंपरिक और स्वदेशी बीज को सुरक्षित रखत है और आपस में आदान प्रदान करत है। जलवायु के अनुकूल पुरानी और लगभग विलुप्त हो रही देसी किस्मन के बीजन को बचा के इनको संरक्षण करो जात है। इन बैंकों से किसान खेती के लाने बीज लिए थे और फसल पकवे के बाद जैसे कि नियम है उनके अनुसार 1.5 गुना बीज वापस बैंक को कर देते हैं। ऐसो करवे से किसानन की महंगे हाइब्रिड और रासायनिक बीज पर निर्भरता कम होते और विपरीत मौसम प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी खेती सुरक्षित और टिकाऊ बना थे। सो किसान भैया हरो सहेज है हर एक अनोखो बीज कैसे के जेई है प्रकृति की अनमोल चीज। किसान भैया हरो खेती किसानी तो सब करते हैं लेकिन एक ऐसी खेती जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखवे के संगे किसान को अतिरिक्त आय भी देते बाहोते औषधीय पौधन की खेती। भारत जैसे देश में पुराने समय से तुलसी अश्वगंधा शतावरी कालमेघ सफेद मूसली एलोवेरा जैसे अनेक पौधन को उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लाने करो जाते। औषधीय पौधों की खेती से किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में दोगुने से अधिक कमाई और बंजर भूमि को सही उपयोग जैसे कई बड़े लाभ मिलते हैं। वर्तमान समय में औषधीय सुगंधित पौधन की बाजार में भारी मांग होने के कारण किसानों को ऊंचे दाम भी मिलते हैं और किसान को कम लागत में भारी मुनाफा होते है। जिन जमीन पे हमारी पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं धान नहीं उग सकते हैं उते अश्वगंधा सतावर खस या ब्रह्मी जैसे औषधीय पौधे आसानी से उग जाते हैं। ये उगाए में कम पानी की जरूरत होते है। ई फसल को बेचे के लाने किसानन को बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और किसान को कहीं भटकने नहीं पड़ते। और अगर हम सरकारी सहायता की बात करें सो किसान भैया हरो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत औषधीय खेती को बढ़ाई के लाने सरकार द्वारा किसानन को 30% से 75% तक अनुदान और वित्तीय सहायता दी जाते है। किसान भैया हरो औषधीय खेती अपनाओ सेहत और समृद्धि दोनों पाओ।
6: किसान भैया हरो पिछले दिना हमने कृषि विज्ञान केंद्र देवास में जाके कृषि विशेषज्ञों से बातचीत करी और जे कृषि विशेषज्ञ भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर से आए हते और इनसे बातचीत करी है पूनम सरावगी बहन ने।
7: कृषि के क्षेत्र में जल उत्पादकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पंडा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
8: नमस्कार
7: सर, इसके बारे में कुछ बताइए कि जल प्रबंधन हम कैसे बढ़ा सकते हैं कृषि उत्पादकता क्षेत्र में।
8: देखिए हमारा जो देश है ये वार्षिक औसतम जो वृष्टिपात है ये लगभग 1200 मिलीमीटर है, लेकिन जब वृष्टिपात का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप हमारा पश्चिम में जो राजस्थान है उसका बाड़मेर जैसलमेर जिले को देखेंगे तो लगभग 250 मिलीमीटर रेनफॉल से शुरू होता है। आप पूर्वोत्तर राज्य की तरफ जब जाएंगे मौसम नाम जो मेघालय में है उसमें 11,000 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो बारिश है उसको हम ऐसे प्रबंधन करें कि जैसे कि हमारा जल उत्पादकता भी बढ़े और फसलों का उपज भी बढ़े और किसान का लाभ वृद्धि हो और हमारा जो भूजल स्तर जो ह्रास हो रहा है वो भी न हो, हमारा जो भूतल जल है वो बरकरार रहे, ये सब चुनौती भरा क्षेत्र है जिसको हम वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारी और किसान सब मिल करके, सिविल सोसाइटी, ये सब मिल करके इसका हल निकालना है। आपको जो हम बताना चाहते हैं कि आप हमारा जो कृषि क्षेत्र में जो जल उत्पादकता जब देखा जाए लगभग 40% है, लेकिन इसको बढ़ा के हमको 60% तक लेना है, यानी जल उपयोगिता का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको, वाटर यूज एफिशिएंसी हमको बढ़ा करके हमको लगभग 60% तक लेना है। इसके लिए कई प्रयास जरूरत है। प्रथम तो किसान भाई आप सब जानना जरूरी है कि हमारा जितना जल है समग्र धरती में उससे 97% जो है ये नमकीन पानी और खारी पानी, सिर्फ 3% जो मीठे पानी है जिसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं, जो कि हमारा खाने और घरेलू उपयोग और कृषि कार्य में लग, ये 3% से फिर क्या है कि 88% हमारा अनुपलब्धता है। कैसे न, उसी 3% जो फ्रेश वाटर और मीठी जल है उससे 77% लगभग वो हमारा जो बर्फ मेरु खंड, जो उत्तर मेरु है, दक्षिण मेरु है, हिमालय बर्फ खंड ग्लेशियर है, उसमें सीमित है, जो उस उपलब्धता हम लोगों के लिए नहीं है, वो आम जनता के लिए अनुपलब्ध है। ऐसे और 11% जल जो कि भूपृष्ठ के नीचे 800 मीटर के नीचे है, जो वो भी हमारा पास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ हमारा पास 12% मीठा जल उपलब्धता है हमारा पास, वो क्या है कि भूपृष्ठ से नीचे 800 मीटर तक लगभग 11% जल है और 1% सरफेस जल है जो नदी में है, तालाब में है, झील में है, यानी 97% चला गया नमकीन में, कोई काम का नहीं है। वो जो 3% मीठे जल अच्छा जल बचा उसी से भी 88% चला गया, वो भी काम का नहीं है, 12% रहा। किसान भाई आप सब जानना जरूरी है कि ये जो मीठा जल कितने महत्वपूर्ण है, ये मीठा जल कुछ नहीं है, ये बारिश का पानी है
7: जी।
8: यही बारिश का पानी हमारा झील में, हमारा नदी में, तालाब में, खेत में रहता है, अब ये हमारा विभिन्न जरूरत को पूरा करता है, फसल उत्पन्न होता है और ये फिर भूजल जमीन के नीचे जाके भूजल बनता है, उसको है फिर हम लिफ्ट पॉइंट के माध्यम से उत्तोलन करके, एक्सट्रैक्शन करके उसको रवि ऋतु में हम फसल में लेते हैं, और जो केनाल चलता है ये भी यही वर्षा जल संरक्षण है। तो ये कुल मिला करके वर्षा जल जल का मुख्य स्रोत है
7: जी।
8: उसको हम लोगों को क्या करना है, ज्यादातर ज्यादा जैसे चाषी भाई, जो किसान भाई, ये लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन को समतुल करें और जमीन का मेड बनाएं और जहां नाली गुजर रहा है उसमें चेक डैम डालें, ज्यादा से ज्यादा जो तालाब पोखरी और खोदे, वर्षा जल को उधर संरक्षित करें, उससे क्या होगा, भूजल भरण भी होगा और हमारा जल उपयोग के लिए जल भी मिलेगा, ये एक साइड है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान और विभिन्न गवेषणा प्रतिष्ठान जो सब वर्षा जल संरक्षण तकनीक विकसित किए हैं कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए, उसको अपनाएं, ये वर्षा जल संरक्षण करके हमको क्या करना है, फसल का पैदावार बढ़ाना है
7: जी।
8: ये एक साइड। दूसरा हमको क्या करना है, जो केनाल क्षेत्र है जहाँ हम लोग सब बृहत मध्यम क्षुद्र डैम बनाए हैं, जल भंडार बनाए हैं, उसी जल को हम क्या करें, ज्यादा मात्रा में फसल में न दे के फसल के आवश्यकता के अनुसार उसका विभिन्न स्तर में फसल का आवश्यकता अनुसार जल उपयोग करें, उपयोग करके हम क्या करें, जल उपयोगिता को बढ़ाएं, उसका सूचकांक को उसको बढ़ाएं, जैसे कि कम जल में हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें और कम जल को हम ज्यादा एरिया में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमको केनाल क्षेत्र में और जो हार्वेस्टेड संग्रहित जल में हमको सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, जो बूंदा जल सेचन है यानी फुहारा जल सेचन है, इसको काम में लेना है, जिससे कि हम कम जल को हम ज्यादा से ज्यादा फसल में प्रयोग कर सकते हैं और हमारा पैदावार बढ़ा सकते हैं। तीसरा चीज है, जब हम भूजल जल उपयोग करते हैं, वो ग्राउंड वाटर आप जानते हैं सबसे कीमती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर बूंद बूंद जाके भरता है, इसलिए हमको वो जल को संरक्षित करके रखना है और उसको जब हम समरसिबल पंप से हम जब निकालते हैं बाहर से, उसको हम जितना आवश्यक है फसल का उतना तक हम काम में लें, क्योंकि ये भूतल जल जब खत्म हो जाएगा दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रबी फसल नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हैं वो सब मर जाएंगे, फिर जो हमारा अच्छा एरिया है वो धीरे धीरे बंजर होगी तो मरुस्थल बन जाता है। तो इसीलिए भूतल जल को बचा के रखना है, और हमारा जो किसान भाई भूजल को निकाल रहे हैं उसको भी फसल के जल आवश्यकता अनुसार कम कम सिंचाई कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा फुहारा सिंचाई, बूंदा सिंचन, ये सब प्रणाली को अपनाइए, जैसे कि हमको कम भूजल जल निकालना पड़े भूगर्भ से
7: जी।
8: और तीसरा चीज है, जो शहर के आसपास क्षेत्र है, किसी गांव में जहां सब नाली निकल रहा है, बर्ज्य जल काफी मात्रा में हमारा देश में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आजकल गांव छोड़ के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। हम लोग को ये देखना है जो पर्याप्त मात्रा में बर्ज्य जल जो उत्पादन हो रहा है उसको कैसे विशोधन करके, उसको शोधन करके हम खेती में लगाएं, क्योंकि वो खेती में लगाने में एक फायदा क्या होगा, हमको जल पर्याप्त मिल जाएगा। दूसरा, ये जो हमारा नदी को, हमारा परिसंस्था परिवेश को जो प्रदूषित कर रहा है, वो पर्यावरण को जो प्रदूषित कर रहा है वो प्रदूषित नहीं करेगा, वो उपयोग में आ जाएगा, हमारा जो जल समस्या भी कुछ की तरफ सॉल्व होगा, और ये जो बड़े जल जो वेस्ट वाटर है उसका भी सही इस्तेमाल हो पाएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है, बड़े जल को कभी सलाद वाली फसल में उपयोग नहीं करना है, उसको साग में जितना ग्रीन्स है उसमें उपयोग नहीं करना है, जैसे नॉन एडिबल पर्पस है, जैसे फूल है और पेड़ पौधा है, कोई ऐसा चीज है जिसमें पेपर बन रहा है, दूसरा कुछ हैंडक्राफ्ट बन रहा है, उस टाइप का पौधा लगाना है, फाइबर क्रॉप्स है जैसे कपास है, दूसरा टाइप का है कि जैसे वो जो बड़े जल में आप जानते हैं काफी मात्रा में हेवी मेटल्स रहते हैं, फिर दूसरा उसमें बहुत सारा माइक्रोब्स भी रहते हैं, ये सब चीज जब फूड चेन को आता है वो ह्यूमन शरीर के अंदर में विभिन्न रोग पैदा करने का पोटेंशियल क्षमता रखता है, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप जब कहेंगे कि ये जो जल है ये बहुत कीमती है, ये जल को हमको ऐसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1950 में जब हमको शुरुआत दौर पर आजादी मिली थी उसके आसपास में हमारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता लगभग 5577 मीटर क्यू था, जो घन मीटर था, लेकिन अभी घट करके 1450 मीटर क्यू हो गया है, यानी हम जल संपद में स्वच्छल देश से अभी हम जल स्ट्रेस्ड नेशन हो गए हैं, यानी जल संकट के आसपास आ गए हैं, और जब ये स्तर 1000 से नीचे आ जाएगा, यानी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1000 मीटर क्यू से कम हो जाएगा, हम जल संकट अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये देश को जल संकट अवस्था से बचा के रखें। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कह रहे हैं आप, संग्रह की बात, ये दो तरीका से हो सकता है, एक हमारा खेती बाड़ी में, हमारा जो कृषि में कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें उसका उपयोग करें, दूसरा जो डोमेस्टिक एरिया है, जो शहर है और जो घर है उससे, जो छत से हमको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसको कैसे हम संग्रहित करें। देखिए, छत से तो सिंपल तरीका है, हमारा पास अभी बहुत सारा पीवीसी पाइप है, हम ले आए छत से लगा के, उसको नीचे हमको कोई वाटर टैंक बनाना है, आरसीसी का बना सकते हैं, ईट का बना सकते हैं, और पीवीसी टैंक भी लगा सकते हैं, उसी पानी को हम पंप के द्वारा, हम क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी सफाई है, हमारा ड्रेस का क्लीन साफ करना, और हमारा जितना किचन गार्डन का पौधा है उसमें सब सिंचाई करना, वो सब काम के लिए बहुत अच्छा है, बर्तन धोना, ये सब काम में उपयोग हो सकता है। इवन उसको हम फिल्टर करके, क्योंकि साफ छाप जब हम साफ रखेंगे वो अच्छी पानी है, वो फिल्टर से उसको हम उपयोग में भी ले सकते हैं, घरों उपयोग में, जैसे हम उसमें नहा सकते हैं, ये सब काम करा सकते हैं, उसमें कोई

0: खराब नहीं है। दूसरा चीज है कि ये जो पाइप है उससे जल को हम डायरेक्ट भूजल भरण के लिए भी भेज सकते हैं। हम क्या करें, छोटा सा टैंक बनाएं, नीचे हम ऐसे मिट्टी रखें पोरोस टाइप का, जब ऊपर से पानी आएगा ये मिट्टी के नीचे जाएगा और हमारा भूजल तक ये धीरे धीरे धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहेगा, वो भी एक उपयोग है। तीसरा उपयोग है कि ये पानी को हम संग्रहित करी हम किचन गार्डन में छोड़ दें, किचन गार्डन में डिफरेंट फसल लगाएं कि जो कि वो इसी पानी से सिंचाई हो जाएगा बरसात के मौसम में, दूसरा सीजन में तो मिलता नहीं है, हम दूसरे सोर्स से उसको सिंचाई करें हमारा किचन गार्डन फसल को। इस तरीके से हम रेन वाटर का संग्रहित कर सकते हैं, उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, इनके लिए और जीवन यापन करना बहुत मुश्किल और कष्टकर हो जाएगा।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी,
0: थैंक यू।
1: इसी क्रम में फब्बारा विधि से फसल उत्पादकता में वृद्धि, इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी दी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर के ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुव चरण साहू ने। वर्तमान समय में सिंचाई की बहुत सारी पद्धतियां हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी फव्वारा पद्धति थोड़ी सी उनके लिए नई है। जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए फव्वारा पद्धति आज के समय में बड़ी ही महत्वपूर्ण पद्धति है, और इसी के संबंध में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं, बातचीत करते हैं डॉक्टर ध्रुव चरण साहू के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फव्वारा पद्धति क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है?
2: एक्चुअली आज के दिन में अगर हमने कोई किसान से, किसान भाई से अगर पूछे आपका खेती करने में क्या समस्या है, तो उनका पहला उत्तर आएगा पानी का अभाव। तो पानी का अभाव जब बोलते हैं तो ये चिंता का विषय है, क्या सच में पानी का अभाव है कि पानी का प्रबंधन का अभाव है। क्योंकि देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष में जितना बारिश होता है, पर्टिकुलरली अगर हमने एमपी का बात करें, मध्य प्रदेश का बात करेंगे और देवास का बात करेंगे, तो देवास में लगभग 1000 से 1100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। और ये बारिश होता है मानसून की पीरियड में, जून जुलाई से लेकर सितंबर तक हम मान सकते हैं उसका लगभग 90% बारिश हो जाता है। और बाकी जो रबी फसल के लिए बचता है केवल 10% पानी, तो 100-150 मिलीमीटर का बारिश होता है। तो इसीलिए हमेशा किसान भाइयों लोग बोलते हैं कि पानी का अभाव है इसीलिए हमने खेती नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रश्न आता है कि जब इतना बारिश हो जाता है हमको जो रबी के टाइम में जो फसल उगाना है तो उसके लिए कितना पानी का जरूरत है। उदाहरण स्वरूप हम अगर देखेंगे, अगर गेहूं लगाना है, गेहूं बोना है, तो उसमें 500 से लेकर 600 मिलीमीटर तक बारिश में पानी में पूरा खेती हो जाता है। ऐसे अगर चीपी का बात करें तो उसमें भी 350-400 मिलीमीटर पानी का पानी में खेती हो जाता है। लेकिन हमारे पास जब 1100 मिलीमीटर का बारिश होता है तब इतना पानी का जो 500 मिलीमीटर हुआ कि 300 से 400 मिलीमीटर का हुआ, तो गेहूं, चिकपी और सोयाबीन टाइप का जो फसल है उसके लिए पानी का अभाव क्यों आता है? तो अभाव इसीलिए आता है कि वो पानी का जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है उसमें हमारा कुछ कमियां है। कमियां क्या है, जो बारिश के दिन में जो थोड़ा सा टाइम के लिए मानसून के पीरियड में इतना सारा बारिश हो जाता है वो पानी को हम उचित ढंग से संरक्षण नहीं कर पाते, तो ज्यादातर का पानी तो वेस्ट हो जाता है, नदी नाला में बह जाता है। तो वो पानी को हमने जितना अधिक संरक्षण करेंगे तो इतना ज्यादा से ज्यादा पानी हमको रबी के टाइम में खेती करने में मिलेगा। और दूसरा बात है, अगर पानी को संरक्षण भी कर लेते हैं रबी सीजन में जब हमने खेती करने जाते हैं, हमने बहुत सारा फसलों में क्या सरफेस मेथड में सिंचाई करते हैं, तो ऊपर से पानी चैनल बना के चैनल में पानी दे के खेती करते हैं, बट उसमें जो एफिशिएंसी जो बात करते हैं उसका जो क्षमता है तो पूरा मात्रा में नहीं हो पाता है। सरफेस मेथड में क्या होता है, ओनली 30-40% पानी हमारा फसल के लिए काम में आता है और बाकी लगभग 60% तक 70-75% पानी वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए तो जब पानी रबी में तो कम तो मिलता है, और जितना मिलता है अगर उसमें से हम 40% केवल फसल के लिए व्यवहार कर पाते हैं और बाकी वेस्ट चला जाता है, ये तो चिंता का विषय है। तो इसीलिए अगर हमको ज्यादा से ज्यादा जमीन पे खेती करना है तब हमको पूरा का पूरा पानी जितना मिलता है उसका कैसे फसल के लिए व्यवहार कर पाए, तो इसीलिए हमने जो सरफेस मेथड में जो सिंचाई करते हैं उसको छोड़ के अभी जो स्प्रिंकलर, जो फुहारा मेथड बोल रहे हैं वो स्प्रिंकलर मेथड, उसी में हमको इरिगेशन करना चाहिए, जिसमें हमने जो सरफेस मेथड का कंपैरिजन तुलना में उसका डबल से ज्यादा एरिया में भी खेती कर सकते हैं। यहाँ अगर हमने 30-40% एफिशिएंसी मानते हैं तो हमने स्प्रिंकलर मेथड में अगर खेती करेंगे तो वहाँ 85-90% तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सरफेस इरिगेशन को हमने छोड़ के स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे तो जितना जमीन हमने सरफेस इरिगेशन में कर पाते हैं उसका 2 गुना से ज्यादा एरिया हमने खेती कर सकते हैं।
1: ये कितनी कारगर साबित होती है, किसानों को ये समझ में आता है कि ये कैसे करना है?
2: हाँ, किसान को अभी तो समझ में आ गया, लेकिन उसका जो अडॉप्शन जो बोलते हैं हमने, तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज है जो किसान तक नहीं पहुंच पाता है और कुछ चीज है उसका जो बोलते हैं कि हमने जो इनिशियल जो खर्चा लगता है उसमें थोड़ा बहुत तो किसान सारे खर्चा उठाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये जो टेक्निक है स्प्रिंकलर इरिगेशन वो पहुंचने में टाइम लग जाता है। नहीं तो इस इरिगेशन मेथड जो स्प्रिंकलर का उसमें तो कोई कमी नहीं है, बट कमी है कि जो किसान भाइयों का जो थोड़ा पैसा इनिशियली जो लगता है तो इतना खर्च करने का जब सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। और इसीलिए भी अभी सरकार की तरफ से बहुत सारे योजना है जिसमें किसान भाइयों को बहुत सब्सिडी मिलता है, अगर वो सब्सिडी को पूरा मात्रा से व्यवहार करें तो करके फिर वो स्प्रिंकलर मेथड को अपना सकते हैं।
1: किसानों को इसकी जानकारी आप लोग कैसे दें?
2: जानकारी हम लोग जैसे अभी जैसे ट्रेनिंग चल रहा है, हमने विभिन्न जगह पे जाके किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं उसका कैसे उसका यूज करें, उसका मेंटेनेंस रख रखाव कैसे करें और ये सब चीज कहाँ मिलता है, कितना खर्चे मिलता है, सरकार का क्या क्या सुविधा है, सब्सिडी किसमें मिलता है, कितना तक मिलता है, ये सब जानकारी हम किसानों को सीधा देते हैं। और जहाँ तक संभव फिर हमने जो विभागीय अधिकारी लोग है उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उनके माध्यम से वो बात जाके भी किसान तक पहुंचेगा, वो भी उसका लाभ लेते हैं।
1: इसके अलावा एक और चीज हमारे किसान भाइयों को जानने की जो जरूरी है वो ये है कि ये मेथड इसकी जानकारी अब किन माध्यमों से हमारे किसानों तक पहुंचाते हैं?
2: हम लोग का जो है हम तो डायरेक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से पहुंचाते हैं, डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से पहुंचाते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब हुआ और कुछ भी है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कोई वीडियो होता है उसको भी अपलोड करते हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, एक्स हुआ, तो टेलीग्राम, इसमें हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं और डायरेक्ट फिजिकल मोड में ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल मोड में बताते हैं, किसान भाइयों को बताते हैं, ऑफिसर्स लोगों को बताते हैं, तो आजकल तो बात पहुंचाना थोड़ा आसान हो गया इतना सोशल मीडिया में।
1: आप हमारे किसानों को और क्या संदेश देना चाहते हैं ड्रिप इरिगेशन के फायदों को लेकर?
2: फायदा तो अभी अगर आपने ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में देखेंगे फायदा अनेक है, अगर गिनेंगे तो एक दो में कुछ कुछ फायदा तो अभी आप बता सकता हूँ, जिसमें जैसे मान लीजिए आपका पहले तो जैसे बताया था आपने अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन यूज किए हैं तो उसमें आपने बाकी मेथड में जितना जमीन सिंचाई कर पाते हैं इसमें दो गुना से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं उतने पानी में, और उसके साथ साथ आपका जो पानी का जो एप्लीकेशन रेट और यूनिफॉर्मिटी जो है तो इतना बढ़िया होता है कि उसमें आपका सारे क्रॉप का जो जर्मिनेशन है वो बढ़िया होता है, उपज बार 20-30% से ज्यादा हो जाता है, तो जो हम वाटर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं पानी का व्यवहार करके हम कितना फसल उगा सकते हैं तो उसमें भी ज्यादा होता है नॉर्मल मेथड्स। तो उसके साथ कोई जमीन मान लो असमतल है तो उसमें सरफेस मेथड में करने में हमको बहुत सारे परेशानियां होता है, तो एक जगह पे ज्यादा पानी हो जाता है तो एक जगह पे पानी पहुंचता नहीं है, तो वो सब जगह पे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ जैसे दिन में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई लेबर नहीं मिला, कभी और कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब सिस्टम के लिए हमको इतना लेबर इतना कुछ नहीं चाहिए जो आसानी से हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे फायदा है।
1: बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैडम।
3: किसान भैयारो आपने सुनी जे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम,
4: आप सुना थे लोकगीत, ये गांव है बलराम रैकवार ने।

0: टाइम भैया हरो, अब हम आप औरन को मंडी भाव से भी अवगत करा देते हैं। आज के मंडी भाव में गेहूं न्यूनतम 2081 प्रति क्विंटल से लेके अधिकतम 3006 रुपया प्रति क्विंटल के भाव के हिसाब से और मॉडल भाव 2680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है। ऐसे ही सोयाबीन को भाव 4800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम 5460 प्रति क्विंटल है। सरसों में न्यूनतम 7200 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 7700 प्रति क्विंटल तक भाव है। ऐसे ही अरहर में 7095 से लेके अधिकतम 7600 रुपया प्रति क्विंटल भाव है। और अंत में मूंग की बात करा थे, सो मूंग के भाव हैं 7700 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 8500 रुपया प्रति क्विंटल है। सो किसान भैया हरो, जे हती आज के मंडी भाव। जे कार्यक्रम आप और उनको कैसा लगा थे, सो हमें के बारे में जरूर आप सूचित करियो। और अब स्वीकार करें रीता बहन की राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो, तो अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुने विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक

0: एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्यकांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
2: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
3: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता के विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया। लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार, मजबूत

0: बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
2: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आप इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था, लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था एनडीए, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रेंट बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था, उसी टाइम में आपको एफआरबीएम कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपो रेट, जो आज हम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इशू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे, तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4-8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिस्कली एक्सट्रावेगेंट हो गया था। आपका अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था जी। हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डिफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया, बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था, लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है, तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे। फिर सारे बैंक्स वो एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था वो लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था, और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट ने किया था, और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसमें एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो एक ही बार हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितना उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आया है, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को कंसोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है, और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2015

0: 25-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम इक्वर करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीए रेशियो उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में वो 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% का आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द एक्यूआर, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे एसएमई जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंक सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है आखिर 19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये एसएमई क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसिल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल, और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए, और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था, और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करें, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाया, एक्यूआर रिव्यू, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल आर, रिफॉर्म्स, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन, गवर्नमेंट में 3 trillion रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरोप करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो आप बीच बीच में आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली एक ही हुआ था। ये लोन जो पहले था, ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज जो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। दो तीन साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फूटिंग, एंड स्ट्रॉन्ग

0: चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जांपल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रेडिट नीड्स.
1: आपने एसएमईज का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप एसएमई सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में भी बताएं, और आईबीसी के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया.
0: देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. पहले तो मैं आईबीसी लेके आता हूं. आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आए थे और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा. पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे वो करते नहीं था. तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे. ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखें, वो पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा. इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था. कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा. तो ये तो पहला बात है. दूसरा बात है कि अगर आप एसएमई सेक्टर को बात करें, एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए. पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ईसीएलजीए स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे उसको लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया. उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ईसीएलजीएस पे, आपको अगर पता है कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ईसीएलजीएस में 2,50,000 crore का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है. और उसके साथ एसएमई सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए. एक तो फॉर एग्जाम्पल जो एसएमई सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं. उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे एसएमई सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल. उसमें जितने सारे एमएसएमई सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आप उसका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं. तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ एसएमई सेक्टर का 24% चल रहा है. एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 crore का ऊपर है, और हमको 7 crore में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन एमएसएमई सेक्टर को हम दे सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप दिन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं. तो ये चीज सबसे अच्छा हुआ है एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था फॉर्मलाइज नहीं था, अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ. इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच पे एक खबर आते हैं कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था. हाँ ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच पे जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले पैंडेमिक के बाद. पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद सर 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया. तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें और कुछ सुधार लेके आए और ज्यादा कोर्ट्स बनाए और थोड़ा देर से मैकेनिज्म है थोड़ा ठीक से देखे, तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं. तो हो सकते हैं फ्यूचर में इसके हम इंप्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है. एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का.
1: इससे पहले कि मैं आईबीबीआई

0: इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एनक्लैट और एनसीएलटी की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
1: देखिए ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जांपल एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखें कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठाया है 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14-15 लाख करोड़ कैश है। तो उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है और पैसा भी उठा सकते हैं और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्विन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
0: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
1: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका एवरग्रीनिंग बोलते हैं। जब को पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
0: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया, दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे, इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते। तो वो लोन वेवर खत्म हो गया, क्योंकि अभी बहुत सारे जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, एलाइड सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज US में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया, पर दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
0: अब वक्त आ गया कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके।
1: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था, और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था। उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उस पर नहीं बढ़े थे। तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था एक दो साल में। तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि ये रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था। इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी पता है कि थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। फिर रिकैपिटलाइजेशन तो होना था। रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो पहला बात है, और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन उसके साथ, इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है। तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक है, और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक देखे। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
0: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
1: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं कोई एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आते हैं रिजर्वेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है। तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमी इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
1: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20%

0: इंटरनेट जा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा होगी एफसीएल में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का। आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 यूएस बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसी रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फास्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, एआई का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का जो भी होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोल रहा था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग। सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो कारंट जनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स में बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस काम जुड़ने और बहुत ही सफाई से कि हमारे व्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, यह आकाशवाणी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो

0: माया के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं। अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए रेखा भारद्वाज और अरिजीत सिंह को फिल्म है बदलापुर। वो लिखे हैं दिनेश विजान और प्रिया सरैया ने, संगीत सचिन जिगर का है।

एजेंट विनोद, कार्यक्रम की अंतिम पेशकश इस फिल्म से। हम सीका और अरिजीत सिंह के गाए इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसर्वर और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: की मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
4: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
5: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है।

0: भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
3: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
2: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
5: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
6: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
4: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
2: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: ख्यालों में
1: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
2: आए हाय सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
3: वहां भाग रही तू मैं,
4: काले से डर गए क्या?
5: हमें काले हैं तो

0: पाला चंदाना, ये सोला साला तंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।
4: बाप

0: भैया।
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

बड़ा के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, जो

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: μυρτιά.
1: Come on, come on.

0: கண்ணா, ஏன் கண்ணா?
1: பக்கம்மா பக்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
4: ओ पहुंचिए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
4: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
4: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
4: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: अयो पहला बोलना ना ऐसा बात। डाई बोला तुम आना गाना गाना आना।
5: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
3: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे हैं गाना गाना।
5: चल
3: देवी, तुम बताना बताना।
2: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
6: यह कच्चा

ये कचतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी।

0: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हो मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आज़ादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना। संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
1: और से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात। Hey, yeah.

0: है यही आओ कुछ करे कटता मौसम
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: तुम्हारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाए।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता।

हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे

0: अच्छा
1: हर्रा सुहाना होगा।
0: अच्छा
1: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

0: समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: No external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026, in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
4: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
0: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for bipoll in 1 seat of Rajya Sabha in West Bengal.